फ्लैग हरे एम्बलम ऑफ अ लायन और घोड़े हाथी को सियापी चतुरंगी सेना लंग को दिग बच निकल है एंड लाइक ए वॉरियर राइडिंग इन टू बैटल ही वेंट टू दैट स्पॉट ओम नमो भगवते वासुदेव अश्वत्थामा के ब्रह्मस्त्र अपनी रक्षा सिंस ही वॉज रेस्क्यूड एंड हिज लाइफ वॉज सेव्ड फ्रॉम द वेपन ऑफ अश्वत्थामा हिज गॉड फादर हिज फादर्स गॉड ब्रदर हु ट्राइड टू किल हिम यादवों और पांडवों को स्नेह तथा अनेक केश भक्ति सुनो ही हैड great affection for his loved ones and they had for him because they thought he was a blessed child un par ati santushta priti se prapulit nayan mahaman parikshit ne mahadhambasrahar diya hai listen now to what took place

अम्बृशं शुद्रहस्तं विवत्स श्यामं स्वरिच्यताम्. The bull is standing upon one leg. He's been struck by somebody dressed like a king in royal insignia. The cow is, he's been beaten on one foot. भयभीत होकर पेशाव करता हुआ एक पट को स्टिपचल में असमर्थ होने कारण. And he's trembling. And of course, Dukit Shudra, he can't control his bladder. So his bladder, of course, has given up. बैल को देखा, he sees this. हवि मूर्ति करने वाले दिन शुद्र को चरण प्रकार तिरस्कृत था. द गॉडेस हु इज द गिव ऑफ घी द काउ दिन शुद्र का चरण तक तिरस्कृत था. शी लुक्स एज शी इज बीइंग स्ट्रक अगेन एंड हर फेस इज थिन एंड शी इज क्राइंग बट सही लाइक शी हैज लॉस्ट हर चाइल्ड त्रिशिप लाइक शी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टार्वेशन भोजन में इच्छाहीन शी हैज नॉट ईटन फॉर डेज नेत्र आंसू बहाती एंड टीयर्स इज फ्लोइंग फ्रॉम हर आईज गोडो पधारिणी पृथ्वी देखा द अर्थ हु एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट एंड दैट्स व्हाट हैपेंस द अर्थ क्राइज व्हेनेवर वी डू द रॉन्ग थिंग व्हेन अबाउट धर्म द रॉन्ग थिंग्स द एट्रोसिटीज बिगिन टू राइज द अर्थ क्राइज. राजा परीक्षित को सुवर्ण खचित रथ में बैठा धनुष बाण को चढ़ाई मेघ समान गंभीर बाण के पूछने लगे. राजा परीक्षित ग्राब्स हिज बोन एज हारो टू डिफेंड. अरे नीच एंड ही बिगिंस टू स्पीक टू द पर्सन हु इज जस्ट लाइक अ किंग. तू कौन है हु आर यू. सब प्रति राजा तुम्हें है और सम्मुख अपने को बल से बल को मारते हैं. व्हाई यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीक एंड द अंडर प्रिविलेज दैट इज Why you are advantaging the less fortunate? Sakshat tune raja ko vesh dharan rakhe hain. You wear the clothes like a king. Parantu natki nahi hai. But your actions do not depict it. Tera karma shudra hai. Your karma is like that of the wicked. To kaun hai? Who are you? Kyo gandhiv dhanushdhari arjun ko tune dar gaya jaani hai. Sri Krishna Maharaj ko trilok ko tu bhul gaya. Do you think that because my grandfather, the great Arjun, the one who held the Gandiva bow, they left this earth and Sri Krishna left it? They abandoned, they went back to their worlds. You seem to have forgotten, or you think that there is no one to protect and there is no one to stand? Padun ko vaikunth ka ya samjhat kyu tune prithvi ko abhi se bir bihin samaj le gai ko bel ko ekant satai hua? Or because you think Sri Krishna has returned to the world of Vaikunth? There is no protector for these poor animals. Is karan tu maha apadhiya. You are sorely mistaken. Aur bad karne yagya hai. Tab raja ne ki bell pucha. He looks at the bull that is standing on one leg with its three legs broken. Aur tum kamal nab se dhaval kaaye. Tum kaun ho? Not oh my dear friend who is white like lotus. Who are you? और तीन पावर रहे थे. व्हाट हैपन टू योर थ्री लेग्स. एक चरण को चलता चाहता हूँ. यू आर ओनली स्टैंडिंग ऑन वन लेग. बैलो रूप धारण किए कोई तुम ही नहीं है. तुम मुझे भ्रमण डालते. टेल टू मी व्हाट हैपन. कौरव को भुजदंड सहित पृथ्वी कल तुम्हारा बिना किसी प्राण मित्र को दुख से आंसू को निकलता है. द कौरव किंग्स ऑफ दिस अर्थ They are no more, but no harm should come to you. Isurabhinandan, O cow, is shudra se tumko kuch bhai nahi hoga. E gomata, that o, have no fear from this person. Tumhara kalyan hoga, main dushta dand ko dene wale hun. For the sake of your welfare, I will punish the unjust that is done to you. Jis raja ko desh sadhu praja dushta ko dukit hota hai, उसो मदानदर राजा को चार गुण. ए किंग फेल्स इन हिज ड्यूटी एंड किंग हैज थ्री मेजर आर्म्स कीर्ति फेम आयु लॉन्ग लाइफ एंड ऐश्वर्य ऑपुलेंस पदलोक नष्ट हो जाते. ऑल ऑफ दैट इज डिस्ट्रॉयड व्हेन ही रिफ्यूजेस टू टेक केयर ऑफ द लेस फॉर्चुनेट. राजा को यह परम धर्म है. दिस इज माई ड्यूटी. हे सुरभिनंदन.

तो रहेगा अधर्म को समुद्र. द मोमेंट दैट वर्चुज लीव अस लोभ ग्रीड अवृत्ति फॉल्सनेस चौर्य द टेंडेंसी टू वांट टू पिलेज एंड रॉब अदर्स मूर्ता बीइंग विकेड अहंकार थिंक ओनली ऑफ अवरसेल्व्स पाप इमर्स अवरसेल्व्स इन सिनफुल एक्टिविटी माया गेट डिल्यूडेड बाय थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर अस क्लेश ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेन डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स डम्ब प्राइड ग्रेट प्राइड हिपोक्रेसी यह अधिक बड़े हैं. दीज विल ग्रो अंडर द एज ऑफ कलयुग अंडर द टाइम दैट वी लिव. ये धर्म मित्र तुम यह मत और जो सत्य धर्म व्रत को तरा यज्ञ विस्तर चतुर्ण ज्ञानी ब्रह्म नॉट वॉरी नॉट ऑफ कोर्स यज्ञ करते राजा परीक्षित के महाराज तुम्हारी अज्ञान जहाँ कहो रहूंगा तुम धनुष बाण लिए पीछे पड़ गए. बट इंस्टेड ऑफ स्लेइंग किंग कली यू फॉरगिव हिम एंड जंग में बाहर भीतर दैट गो आउटसाइड डोंट कम anywhere that I am. In other words, where God resides, don't let these qualities enter. And the only way to prevent these qualities from entering, the one who becomes the guardian of that those gates is Sri Krishna. Is the divine Lord and bhakti, the devotion that is dedicated to him. Is garden me yah dunga. He says, go on outside. Chadiyoga rachne satyuk trita dwapar kalyuk me unke avashta praban karte hain. You have grown in this age. And you have become ripened in this age. Therefore, of course, do not remain. So Kali tells him, he says, Raja Parikshit, that anywhere I go to stay, you're saying stay out of from your limits, but anywhere I go, I see you with a dhanush and a ban. How am I going to get my time? This is my time. This is why I am here. So then Bhagwan says very beautifully, Sukadev, Sut Maharaj explains to Shaunak Rishi, परीक्षित संतुष्ट हुआ अनेक मन मुकोदय नहीं आए हैं फिर कलयुग कहाँ हे दीननाथ मुझे एक गुण को वहाँ बलदायक हो सतयुग में कोई वैकुंठ है. दैट लॉर्ड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू. आई वुड लाइक ऑफ कोर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स आई कुड नॉट हैव माय इन्फ्लुएंस देयरफॉर आई गिव मी सम प्लेसेस टू स्टे. सो उवाच अभ्यास तदा तस्मै स्थानीय कले ददौ जूतम पानम श्रियस्तुन यथा धर्मश्चतुर्विदः गिव हिम फोर प्लेस टू स्टे. जब इस प्रकार कलयुग के लिए स्थान when कलयुग asks for places stay, he gave him these places. जहाँ जुआ होते हैं where there is gambling, stay there. जहाँ मदिरा को बिकते हो where there is partaking of मदिरा. मदिरा means intoxicants, alcohol. Go and stay there. जहाँ वैश्य रहते हैं वैश्य means places of where ladies of ill repute is, stay there. और जहाँ जीव हिंसो हो. And when there is no respect for creatures and their lives are taken, go and stay there. Ye char sthan tumko diya hai. You remain in those places. From here, you will spread your vices. Tum in charo ko sthan vas karte, phir vinir kalyuk bole kripa sindhu, mere kutumb bahut hain. Then he says, you have given me all of these places, but I have to stay with my family too. So then Kali, Raja Parikshit kaha, sone ke tum raho. That go and sit now in the element of gold. Is prakar jhoot, mad, kaam, rajgun, vaidya, panch sthan tumko ho. Jhoot, wherever people speak falsehood. Mad, where people have no control. Kaam, where there is unlimited passion, no control of desires. Rajgun, where there is a predominance of ignorance. Or vaidya, and where there is constant enmity. Ya panch sthan tumko diya hai. You would always remain here. And dharma roop prish ko teen pad ko sauj deya tan nasht ho gaye.

गणपति गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, आदिशक्ति नव दुर्गा माता की, प्रिंसिपल शिव वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Sitaram, I'm Alicia, inviting you to join me Monday to Friday, 7 a.m. to 10 a.m. for the program Subah, starting you on an inspirational note and taking you through a musical journey as we keep each other company only on Radio Jagriti 102.7 FM. Sitaram.

कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना, शादी है बर्बादी। दी दी दी एंड।

क्या दशा की प्रभु रामचंद्र की, दुष्ट रावण में सीता मैया को हर न कर ले। अब काऊ बता करेंगे सीता मैया को। हाँ, राम भक्त हनुमान थे, वो ही समुंदर राम कर पाएंगे।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: नहीं।

भगवती सरस्वती माता की जय। सच नाम लोग आरती करेंगे। लेट अस ऑल स्टैंड एज यू ग्लोरीफाई भगवान थ्रू द वेविंग ऑफ द सेक्रेड लाइन। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी।

0: के लाखों सहित हे मन व्हाट ट्रबल यू हैव लाखों दुख यू कुड हैव थाउजेंड्स ऑफ हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स
1: दुख लाखों सहे मुख से गोविंद
0: करे जस्ट टेक द नेम मुख गोविंद यू जस्ट टेक हिज नेम अलोन एंड दैट इज इनफ

this is Magan, this is joy of Bhagwan. So Raja Parikshit once again listens, of course, from the lips of the great Sukadev Mahamuni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hey Parikshit, पुण्य कीर्ति वाली श्री भगवान अंश जिनका जन्म हुआ स्वयं मनु वंश वर्णन करता हूँ शत्रुप को पति मनु के भगवान वासुदेव कला से प्रिय व्रतुतन पा दो पुत्र है जगत की रक्षा स्थिर करने लगे ब्रह्मा क्रिएट्स द वर्ल्ड